साथ ही नीचे पर के साथ जुपन का जो तबल दिमाग है जाए उन जापोटा सुखा बेकोट।